0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: संगीत
3: संगीत
4: संगीत रूदी खुराक है,
2: आत्मा दी आवाज है,
4: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है।
4: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है,
4: जिंदगी सांझ है, खिमा है,
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है।
4: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब
4: कल्चर ऑफ पंजाब

0: जाप ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: आंखों में आंसू को गिरने न दिया, मिट्टी पे मोतियों को बिखरने न दिया, जिस राह पर पड़े थे तेरे कदमों के निशान, उस राह से हमने किसी को गुजरने न दिया। जी हाँ, दिस लव इज मैजिकल, और अक्सर प्यार के इजहार में एक अहम जरिया है आंखें, जो बिन बोले बहुत कुछ बोल जाती हैं। वो आंखें जिन्हें हम खामोश अल्फाज कह दें, एहसास कह दें तो गलत ना होगा।

0: वो बहती नदी सी है और रुका हुआ हूँ मैं, अब उसके आगे कोई वजूद नहीं मेरा, खजाने सी है वो और लूटा हुआ हूँ मैं।
1: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
2: चाहे अपनों का साथ मिले या ना मिले, लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो उनके लिए दुआ दुआ और सिर्फ दुआ मन से निकलती है। मेरा लव्स लव्स दुआ दुआ, मेरी आंखों से धुला हुआ, तुझे जिंदगी की वो सहर मिले, तुझे मोहब्बतों का सफर मिले, तुझे दर्द और गम ना कभी छू सके, तेरी आंख कभी न नम हो सके, तेरा प्यार जिस पे निसार हो वो हमेशा तेरे पास हो, ये दुआ हो कोई गिला नहीं, तुझे जिंदगी में वो सुकून मिले जो किसी और को कभी मिला।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: मुस्कुराहटों का मतलब ये कतई नहीं है कि आप आंसुओं को भूल जाएं, क्योंकि ये मुस्कुराहटों की तरह सिर्फ सुख में ही हमारे पास नहीं आते, गम में भी पूरा साथ निभाते हैं। दुख की घड़ी में आए तो दिल का बोझ हल्का कर जाते हैं और खुशी के मौके पर भी बस ऐसे ही निकल आते हैं। फिर हम इन्हें मुस्कुराहटों से कम क्यों समझें, क्योंकि ये तो ऐसी सौगात हैं जो बिन मांगे ही हमें मिल जाते हैं।

कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज। कोशिश करें और खुद को गार्बेज बॉक्स न बनने दें, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई इंसान किसी को माफ नहीं कर पाता या करना नहीं चाहता तो वो एक्चुअली खुद को एक कमरे में बंद कर रहा है जहां बहुत अंधेरा है। पर एक दिन तो उसको वहां से बाहर निकलना होगा ना। इसलिए जब हम मन में इतने ग्रजेस, नफरत और रिजेंटमेंट पालते हैं तो हम किसी और को नहीं खुद को सबसे ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मन में सबको पता है, बट थ्योरी इतनी अच्छे से पता होने के बावजूद प्रैक्टिकली हम नहीं जी पाते हैं।

नदर करै ता सच पछाणा, साचो पछाणा ताम तेरा, जाम अब जावै दुख भूख संसार किए सासै हो चुकावै। बिनवंत नानक जाय सहसा, बुझै गुर विचारा, वड्डा साहिब है आप अलख्या।

सारंग ज्यों पग तरै ठिम ठिम आप आप संदूरै श्री रंग राती फिरै माती उद गंगा वाणी बिरवंत नानक दास हरका तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी वढ़ंस महला तीजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अपने पिरकै रंग रती मुइये सोभावंती नारे सच्चा शब्द मिल रहिये मुइये फिर रावे पाए प्यारे सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर सो न्यो रिचाया आप गवाया ता पिर पाया गुर कै शब्द समाया सा तन शब्द सुहावी प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा तन मिल लई पिर आपे सच्चा सहे सवारी।

जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे व्यापारा सतगुर सेव ने अपना अंतर सबद्या पारा अंतर सबद्या पारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजे पत गवाई हाउ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेव ने अपना से जनवट पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत ने चलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अभागे नानक सहजे सेवै गुरे अपना से पूरे वडभागे वडंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजीऐ सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुणमय गुणी समाई राम गुणमय गुणी समाए जिस आप बुझाए लाहा भगत संसारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पद खोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनो एतवा पार लाए रतन पदार्थ बन जी जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा राम कूड़ बोल बेखावनी बो वदै विकारा राम बो वदै विकारा सह सयो संसारा बिन नामै पत खोई पढ़ पढ़।

बहुत से आणपो लया ना जाई कर थाके सब चतराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बरियावर ना कोई हर आपे पुरख निरंजन सोई वडहंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञाना देर बिनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास गिरासे जिन कौ हर प्रभु कृपा तारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन ना जाई राम हर नाम देवे मेरा अंत सिखाई राम हर नाम मेरा अंत सिखाई गुर सतगुर नाम गिरडाया जिथे पुत्र कलत्र कोई बेली नाही तिथे हर नाम छडाया धन तन सतगुर पुरख निरंजन जित मिल हर नाम ते आई मेरा सतगुर प्यारा मैं गुरबिन रहन ना जाई जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम तेने फल जन्म सब बिरथा गवाया राम ने फल जन्म तेन बिरथा गवाया ते सख्त मोए मर चूरे कर होंदे रतन पदार्थ भूखे भागहीन हर दूरे हर तिनका दर्शना करी आओ जिनी हर नाम ना त्याया जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया हम चात्रक दीन हर पास बेनंती राम गुरमेल मेरा प्यारा हम सतगुर करे भक्ति राम हर सतगुर करे भक्ति जा हर प्रभु कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर नाम हर सती हम चात्रक दीन हर पास बेनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बास पूछे जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे नित करे बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुखदाता सुन गुरमुख नाम सब से हो मैं पापा राम जप हर नाम लथे अड़े जगतापा राम हर नाम जिनी आराध्या तिनके दुख पाप निवारे सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना जम कंकर मार बिदारे हर प्रभु कृपा तारी सुखदाते दुखलाथे पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब से हम मैं पापा जप हर नाम मेरे मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरूत पय शरीरा आंदन सह समाध हर लागी हर जपया गैर गंभीरा जात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया जप हर नाम मेरे मन पाया।

0: दुख पंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया जन नानक नाम उदारे, हर तारो कृपा कर कृपा लिहो उबारे राम।
1: सर्व सांझी गुरबाणी प्रोग्राम दे स्पॉन्सर हन टॉप लिंक लोन एंड लीजिंग। तुहाडा ट्रक ट्रेलर दा लोन कितों नहीं हो रहा, जां तुसी यूज्ड ट्रक खरीदने हन ते सानू कॉल करो 204-480-9600 जां ऑनलाइन विजिट करो toplinkfinancial.com।

0: मास्टर कॉल करो 204-772-1313 कनाडास नंबर वन प्रोवाइडर ऑफ ट्रेनिंग कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री ACI e-manifest permits CTPAT and more visit avaal.com
1: financial success planning naal aunda hai na ki sirf kismat naal daljeet kaith noora financial to tuhanu guide karde ne retirement investments te tax planning vich simple clear te result oriented approach naal book karo apni consultation ajj hi call 204-979-0786 noora financial future nu secure karo ajj to
2: ithe aake bachiyan nu ik behtar zindagi den da supna ta pura hunda nazar aaya hai par डर भी लगता है कि कितने अपना पिछोकड़ अपनी माँ बोली नू ना भूल जान।
3: ये डर तेरा ही नहीं पंजाबों आ वसे हर माँ प्यो दा है इसलिए सिक्ख्या क्लासेस लेके आया है ऑनलाइन पंजाबी लर्निंग कोर्स जिस विच तुहाडे बच्चे घर बैठे ही पंजाबी सीख सकते हैं। इस कोर्स विच बच्चे अपने परिवारिक रिश्ते ते साडे इतिहास बारे भी जानू हुंदे हन। इस दे नाल बेसिक मैथ्स मोरल वैल्यूज ते मेंटल एक्सरसाइज भी करवाइया जांदियां हन। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स फ्री डेमो क्लास अज ही कॉल करो 204-463-0110
4: विनीपेग वालों तैयार हो जाओ गर्जा ब्रोस दी 1115 गेटवे रोड लोकेशन रीओपन हो गई है
5: नवीन मैनेजमेंट टीम टू स्पेशल रीओपनिंग प्राइसेस दे नाल 1115 गेटवे रोड स्टोर फ्रेश लुक फ्रेश टीम ते ओही गर्जा ब्रोस दा डिलीशियस टेस्ट
4: एंजॉय करो क्रिस्पी फिश पकौड़ा मैरिनेट चिकन लेग्स एंड थाइस विंग्स टिक्का फिश गोट लैम्ब वेज ऑप्शन एंड हेल्दी नॉन फ्राइड ओवन कुक आइटम्स हर फैमिली हर पार्टी दे लई परफेक्ट
6: विनीपेग वालों गर्जा ब्रोस गेटवे ते क्रिस्पी फिश पकौड़ा दी सिर्फ $899 दी स्पेशल प्राइस नो मिस ना कर जाइयो
5: विजिट गर्चा ब्रोस 1115 गेटवे रोड यूनिट 5 लोकेशन
4: गर्चा ब्रोस टेस्ट दैट ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर
7: तुसी सुन रहे हो विनीपेग दा असली रेडियो रेडियो तमाल
8: भाई साडा बापू मक्खन सों कहंदा हुंदा सी भाई माड़े हाथ लगी चीज बहुते दिन नहीं कड़दी सो भाई जे गड्डी जान ना रखी है ता फिर रिपेयर भी ता चंगे था होनी चाहिए अपने ऑटो वर्क्स वाले हैं ना एक मेक ते मॉडल दिया कारां दी तसल्ली बख्श मैकेनिकल रिपेयर कर दे ऑयल चेंज व्हील अलाइनमेंट टैक्सी लिमोजिन दी सेफ्टी कर दे भाई बॉडी दा को माड़ा मोटर रिपेयर दा कम एंड डेंटिंग पेंटिंग दा ओ भी हो जू जे विंडशील्ड रिपेयर करवानी है जां फिर करवानी है रिप्लेस ओ भी चक देणगे हां नाले जे होर गड्डी लैण दा विचार है पर यूज्ड कारां भी हुंदियां ना कोले भाई जाना किथे अपने 306 स्टेनलेस स्ट्रीट विनीपेग याद रखियो सिकंदर नु फोन कर लियो ऑटो वर्क्स वाले 204-942-4690 भाई 204-942-4690
9: की तुहाडा भी सपना है के अपना घर होवे ता इको एक नाम याद रखियो वेंचुरा कस्टम होम्स ते विनमैक्स रियल एस्टेट दे बॉबी सिंह जी दा इना कोल है 15 साल तो भी ज्यादा दा तजुर्बा वेस्ट सेंट पॉल हाईलैंड पॉइंट रिवर स्प्रिंग जा शहर दे किसी भी एरिया विच इना दी मदद नाल अपने कस्टम ते मॉडर्न होम बनाओ बॉबी सिंह होरा कोल इस समय नवे घरां दीआं बहुत सारीआं प्रमोशन्स हन कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी होवे कॉल बॉबी सिंह 204-510-9485 204-510-9485
10: ट्रैवल द प्लान है वीजा दी टेंशन है या इंश्योरेंस दी लोड है ता फिर याद रखो मान इंटरनेशनल ट्रैवल वीजा असिस्टेंस अमेजिंग वेकेशन पैकेजेस डोमेस्टिक ते इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स ओ भी ग्रेट डील्स नाल ते हर तरह दे इंश्योरेंस कॉम्पिटिटिव रेट्स नाल सत कन्वीनिएंट ऑफिसेस लोकेशंस ते 24/7 सर्विस हजारां लोकां दा भरोसा फास्ट रिलायबल ते फ्रेंडली सर्विस आज ही कॉल करो 204-202-0104 याद रखो मान इंटरनेशनल ट्रैवल योर ट्रस्ट Travel partner. We are open 24/7 to serve you.
11: This is Sunneya. Winnipeg, the Asli Radio. Radio Tamal.
12: Radio Tamal.
11: Radio Tamal.